छु रेडियो नेपाल ख नेपाल पासे समाचार जिउ पेश पखिना दिशा थौ नेपाल सम्मत चिन्सा सौ पिखु द अनलागा चतुर्दशी सरकार वैगो आर्थिक दे देन्यङ्क न्यादौ सोसो वा स्विन्यागु मेगावाट क्षमता थ्याङ्कीको तातुना कागुदो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पिथङ्गु विकास च्याजो सुसी दोषी वा पिगु मेगावाट मत तनिगु आजो कागु ख अथे चिदङ्गु जलविद्युत आयोजना पिसङ्गु मेगावाट वा सूर्य ऊर्जा गुइगुगु मेगावाट मत उत्पादन यागु ज्याजोदो सरकार बामलागो फे चिका प्याची लकस देखेको योजना न्याकुकुदो नेपाल स्वच्छ फे वा समृद्धि परियोजना अर्थात् नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट एन क्याप वैगो 2083-84 निसे छेलबुले हेगो तयारी यागु ख थुकिया नीति च्यागु अर्ब ने छगु करोड परियोजना न्याकेतेङ्गुदो सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या बागमती प्रदेश सभापति उत्सव अर्याल त्यानादिगुदो अर्याल निवर्तमान सभापति डाक्टर अच्युतम लामिछेन्दा त निगु पोटाचको बुकुगु जिमी समाचारदाता तहागु ख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल थौ चिन झाया दिगुदो चिनिया समकक्षी वाङी या बोन्या निगु देदुथिया स्वापु या विशेष सल या त पिनुयङ्क भ्रमण या नीति उखे झाया दिगु ख दक्षिणी जलाखाला दे भारत भ्रमण सिधे ढुङ्का उत्तरी चिन भ्रमण या तिङ्गु ख थो भ्रमण या झोले वेक्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी या नेता चिनिया उच्च अधिकारी चिनिया जनता नाप ब्याग्लन ब्याग्लन नाप्लागु घोषा गुया तगुदु सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा कला साहित्य भ्या व संस्कृति देया शक्ति व मसिका लिदसा जुग्ली उमित मका तेमा धैदिगुदु गोर्खापत्र संस्थान या मधुपर्क हना ज्याजोसँग वेक्ल भौतिक पूर्वाधार व आर्थिक सूचकाङ्क नाप भ्या साहित्य व संस्कृति विकास जिमा धैदिगु ख ज्याजोसँग साहित्यकार यादव खरेल वरिष्ठ कलाकार भावपन्थी व गीता त्रिपाठी या त नेदो नेदो दा नाप हङ्गु ख संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल नेपाल या त आरोग्य पर्यटन या अन्तर्राष्ट्रिय लागायक त पलिस्ता यागु धाइदिगुदु विश्व आरोग्य दिवस लसदै मिग यहाँको सागो गुज्याजोले वेक्ल वैगु छिद या त आरोग्य दशक या कथ हनीगु ज्या याना चुनागु यत्ना दिल मन्त्री पौडेल नेपाल बहु आध्यात्मिक भूमि जुगुली थनिया स्वापु गु खुसी

निचगु वडा चार व बत्तीस छिगु छिगु थासे लख तोपैगु तुकमा यागु ख। नेपाल भारत सीमा लागे दुगु सीमा था या संरक्षण हाकन देखेगु ज्या यागु तातुना निगुली दे या अधिकारी दोती झापा या बिर्ता मोदे मङ्का बैठक कोचागुदु नापी विभाग सीमा शाखा ए या गोस जुगु बैठके पूर्वी नेपाल या झापा इलाम पाँच थर व ताप्लेजुङ नाप स्वागु सीमा लागे न्याकु फिल ज्या या प्रगति या त दुवाला सोगु ख। त्रिपुरे चोङ्गु नेपाल आँखा अस्पताल विदाय दिन आइतबार न नियमित सेवा न्याका चोङ्गु धागुदो नेपाए नापाङ्गु मिका अस्पताल कत मसुगु थो अस्पताल आइतबार निसे शुक्रबार तक मधिक सेवा बिहाउया चोङ्गु ख। अस्पताल हिया नित सुतेसिया च्यातत्या इल निसे बिरामी दर्ता सुरु याइगु निनेसिया सुता यितक विशेषज्ञ चिकित्सक पाके जाँच हो वास सेवा बिगु व्यवस्था जुगु अस्पतालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाई जानकारी ब्यादिको ख। अस्पताल आधुनिक पूर्वाधार अत्याधुनिक उपकरणले चाहिँ अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ अप्टोमेट्रिक्स नर्सिङ नाप प्राविधिक जनशक्ति पाखे मिखा स्वास्थ्य सेवा ब्याउयाचङ्गु ख। अस्पताल थौकने चिन्सम्म नेत्र विशेषज्ञ छम एनेस्थियालोजिस्ट नेम अप्टोमेट्रिक्स सोम फेलो नापोना मुख सत्य कर्मचारी ज्याइना चुङ्गुदु अस्पतालले नियानित सात से निसे गुस बिरामी सेवाक याचुङ्गु ख। धासा मोतीबिन्दु रेटिना जलबिन्दु कर्णिया लिसे मस्तेगो मिखालुए सम्बन्धी जटिल वासलिसे शल्यक्रिया न नियमित रूपमा ह्याका चुङ्गुदु। चलचित्र विदा पाखे ए महानगरपालिका व सङ्गीत विदा पाखे यल महानगरपालिका युनेस्को या रचनात्मक सहर सञ्जाले दुज जुगुदु रचनात्मक उद्योग विकास व विस्तार नीति कल्चरल एन्ड क्रिएटिभ इन्डस्ट्रिज फ्रेन्स ग्रुप फर सिसिआई निर्माण याना थ व थ अभ्यास ज्ञान सिप अनुबल कालबिल ह्याका हगु ए महानगरपालिका या कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डङ्गोल जानकारी ब्यादिको ख। थुकिया नापाङ्गु बैठक एल महानगरपालिका गोसागु ढङ्गुगुदु ए महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोल या अध्यक्ष निकोगु बैठक कोचागु ख। बैठके थम चयन यानागु विधा व थो अन्तर्गत पुवङ्गु ज्या विशेष जानकारी बिगु चोले ए महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोल चलचित्र विधा रचनात्मक उद्योगका मेगो विधा या त चलचित्र पाखे क घ्या फैगु समुदाय स्तरीय रचनात्मक अर्थतन्त्र या त ह्याके याङ्के फैगु जुक्ने ए महानगरपालिका चलचित्र विधा चयन यागु यतना दिल अथे हे एल महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु मर्जन महानगर सङ्गीत विधा पाखे युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्के दुज जुत तालागु कनादिसे थुकिया त समुदाय स्तरीय अभ्यास अपेकेगु लिसे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय मसिकेगु ज्यालिसे स्वापु दुगु प्राथमिक योजना दुगु यतना दिल रचनात्मक अर्थतन्त्र दिगु विकास या प्रवर्धन रोजगारी सृजना अन्तर्सम्बन्ध विकास गोहाली यो साझेदारी विस्तारी नीति स्थानीय सरकार हो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तेगु मङ्का दबु कथ थोपुच या त याका इङ्के तेङ्गु वेक या धापु ख। पेट्रोलियम पदार्थ नापन देखेगु हल जोल मु मधिक था उना चुङ्ली सुदूरपश्चिम प्रदेशीय योजना लिचो लागुदो ठेक्का सम्झौता मु उपका मोबियु गुली नेछगु प्रतिशत आयोजना दिना चुङ्गु सडक डिभिजन ज्याको महेन्द्रनगर या सूचना अधिकारी इन्जिनियर हरिश प्रसाद जोशी दाइदिगु ख। अथे कैलाली व कञ्चनपुर या गुगु सडक आयोजना पिच न दिना चुङ्गुदो। काभ्रे पलाञ्चोक या नमबुद्ध नगरपालिका बुच्चाकोटे मिग मिक जुगु बस छाका सिपी च्यामिसियागु मसिका पिहा वगुदु सिपी काभ्रे पलाञ्चोक या रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर छ या पी न्याद या मेघबहादुर तामाङ सुपेद या फुलमाया तामाङ हो ने न्याद या इन्द्रबहादुर तामाङ ख। अथे रोसी गाउँपालिका आठ या खुइद दुम प्यारीमाया तामाङ न सिगु ख। अथे झाकेलाना दैलेख
किया सुदया बम बहादुर भण्डारी सिन्धुलिया ग्याङले गाउँपालिका वडा नम्बर 4 या निदिद या सुमी तामाङ न सिगदो अथे रोसी गाउँपालिका 6 या नियन्याद या राजु तामाङ रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 या खुइदया माया तामाङ न सिगु ख खापा चुम त तुलकेल अस्ताले वास याना चुङदु थोय दुते नेपाल प्रहरी झाका त दुवाले त नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय काभ्रे प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कमल थापा या कजुते

जो चलोपा अलि लसकुस दु ह्युपा हगुनुग सच हले निनामी भाजु मेजुपी सदा थे जिरुबी श्रेष्ठ वे धुन प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे या गुहाली कया अलि निनामी भाजु मेजुपी छिसिएसु थो जाजो ह्युपा हगुनुग स आइतबा पति कसुथसिया जिता इजु झिगु मिनेट निसे छिन्छ त इ त वै अलि थोय जाजो यता छिस www.radionepal.gov.np वो www.radionepalonline नापा छिस रेडियो नेपाल थी फ्रिक्वेन्सी 98.103 मेगाहर्ज छिसा नेपाल न्याङ्कचोना नेना दिफु धासा छिसा वेबसाइट पाके हलि न्याङ्कचोना नेना दिफु अले थोए जाजु याता छिसा माया मतिना याना फोन याना दि गु खसा फोन याना दि त फोन या ख 42,721 हो 42,736 थुले धासे नेनामी भाजु मेजुपी आदा सा दक्ले नापा चिनेवा तेगु राष्ट्रिय मेने ने मे नापना पा चिता लसकु सेना हे जने अले गुलिसिना चिता धाई गु यही कि नेपाल भाषा राष्ट्रिय मे मुखु थो दकान धैदी गुदु उकिन थु शिवेन बालनागु मे छु वल दासा अवश्य न धैदी स उकिया तान जिमसन थ्वे के गु जुई अले जने गणन आधिकारिकता काको को आधिकारिकता विशेषण जानकारी बिएदि स दासे आदासा छिने वातेगु राष्ट्रिय मे

0: जो निनामी भाजु मेजु पे छिगुते चच धाके गुनीति अले छिगुते सेलाके गुनीति दिसिलाके गुनीति यकुनिको सहित जुया छिगुते यता थनतक ह्युपाय नुनुगु ख्वा नुनुगु सवा बिया थनतक वे धुङ्क गुदु उकिन थु नुनु कथा यागु नुनु सरकार परिस्ता यापिङ गुलिन सहित जुपिङ घापा जुपिङ अले गुलिन बेपत्ता जुया चोपि मनु त दु वे कपि सकल होनहार मनुपिन्ता जिमिगु थो ज्याजो पाखे छगु कथा बिचाहाका चोना छौ पाखे सलाम देसना चोना धासे निनामी भाजु मेजु पि झास थौया ज्याझोले छिगु बिचा पङ्का दिस अले थौया विषय वस्तु धैगु जिन्यगु विषय वस्तु जोना वैगु दु छिता छु य वै विषय वस्तु संसिसन थगु बिचा पङ्का दिफु छौ दास शिक्षा निशुल्क या धैगु मजुल धैगु कथा मनु तेसँग खनाना चोङ्गु दु दास शिक्षक विषय न असन्तुष्टि वा विद्यालय क्याम्पस गुलिन प्राइभेट सेक्टर दु सरकारी सामुदायिक स्वयन प्राइभेट सेक्टर दु अनचम्पिसा यको कथा कुङखिना चङ्गु दु धासा छौ कथा थो बजेटे चाहिने किसान मजदुर विपन्न गरी वर्गया नीति मजुल किसान त्यता छु छौ तितो ते गु नीति छु छौ ग्वालिकागु नीति न निगु करोड मछि अन धितो ते माला उगिना यको थाकु धैगु कथा मनो त्यसँग कुङखिना चङ्गु जुल थो विशेष छिगु बिचा पङ्का दिफु छिगु बिचा छु ख गे ख वा प्याची ख गथे ख छिसन धया दिफु क्या नीति फोन ल्याख 42 11 7 21 42 11 फोन साप्ति दिमा पासे तलस कुस्याना चुना हजुर हेलो
1: हजुर जोजो लपा रुबिजो
0: हजुर जोजो लपा अलि बुद्धे ज्यू माफु
1: जे लुई दे रायन्द्र नकन मे
0: राजे ज्यू माफु
1: हजुर ठीक छ पदो पदो चाहिँ उठक लान्छ न एसाना ठट्या ख ल
0: हजुर गुबले गुबले ए ज्यू
1: ठीक ल अलि जे प्राविधिक पासे दिस कन जे भ्याज कसन दि माथे जंग नेपाल भाषा ल वया गाइड न इच्छा दैने ल
0: हजुर
1: जे नेपाल भाषा दै ठाउँगने सख्यान नुगले ट्यासिने माउडो मखला हामी मे चाइनीज भ्या जापानीज भ्या डक्कु भ्या न सेना चोडो मखला हे ज्या जे पासस कन
0: तर जुइ निसा छौ चाहिँ नि बाध्यता जुइ छौ चाहिँ रहर न जुइ मुखला छौ चाहिँ मन छुटा वो जी न सेके माधै छौ चाहिँ देमाला नि डुनुला नि छ वो चाहिँ मरुलियाना न थाकु अलि गुलिसिता चाहिँ छिसा सेके फै मुखु दैगु न

दि रेडियो नेपालीन आङ श्रिङ लामा शेर्पा ने शेरिके कि साङ्गुर सेन्रोनाङ हेम्बी छिग्याल लोन्पो सिसिर खनाल ग्याना कि छिग्याल लोन्पो वाङ यी कि देन्चाङला ग्याना कि निमाजी कि जिकुर कि तुप्ला बेजिङ फेपख्यलवाए बेजिङला ओतुप नम्रु थाङला खोङला ग्याना कि तन्दोकला हेम्बी कार्यवाहक सुङसप रोसन खनाल ताङ ग्याना कि छिग्याल लोन्खाङ कि कुसप तुई टासी देलेक सु नगुबिन ग्यानाकला छिग्याल लोन्पो खनाल कि हेम्बी मिति अताङ क्यान टोङ्गु कि तुप्ला रिमुवाइसिसि हेम्बु ताङ ग्यानाक पर्कि जी मंग ग्याशा जब कोरला टोंगु कितुब शेनवाए लोनपो खानाल ग्यालखापला छिगेल की डोसुंग लाखपा जब मिकुल की बेजिंगला ओतुब एमबी सुंगसाप खांगी कोडी कितुब डोसुंग हेंजमला सक्षु कितुब तांग ग्यानाक की जुक्टुन संगमेंती ओतांग क्यान टोंगु कितुब ल्यारी मोतुब शेनवाए लोनपो खानाल असार लागी गते सुमकी सेरमु रंगुल लोंगफेउ ल्यारी मोतुब शेनवाए ग्यानाक की ग्यालसा बेजिंगला खांगरी जेकु मि तेजिन संगिए सोगमी मिङमा ग्याबु ताङ यम्बु ताङ ग्यानाक कि ति क्यान चमोलोङमो ज्याउ मिरा ङपचु सिकुर चुङवाए थेङ दिन्छु थोन सुम्की चमोलोङमो तुसेन कि कप्ला बेजिङला जपासाङ सिर्मु कोटी क्याउ यम्बु ग्यानाक चमोलोङमो एडभेन्चर फेस्टिभलला खोङतिवा सिकुर चुङगुप एम्बी सुङसाप खाङकी सेतुबिन गोमी छोक्सो सोनपा इन्दिरा राणा मगर ताङ एम्बी सुङसाप खाङकी कार्यवाहक सुङसाप रोशन खनाल कि ग्यानाक कि मिमिरा ङ निसु गु ताङ एम्बी मिमिरा निसु जिला सिकुर हिगे नगुबिन एम्बी खाङरी टोसम कि यर्ग्या तेजिन एम्बु ताङ ग्यानाक खाङरी सकुल ताङ टोसम सङमेन तुई पर्ला सिग्रिल ग्यासा जब मिक्युल कि दिल्यारिम कोडिक्याउ सेनवाए ती कप्ला ग्यानाक कि तन्दोकला एम्बी कार्यवाहक सुङसप खनाल कि चमोलोङमो खाक्से ताङ जम्बुलिङला एम्बुला माउन्टेनियरिङ हब कि शिला एम्बी ल्यागेनकोरला सलुजो नाङुप सेनवाए प्रतिनिधि सभाला विनियोजन विधेयक नितोङ गेचुगे सुम नङसिन लोनखाङ ताङ डलौतु विनियोजन शीर्षक कोर्ला ताङगुप असर लाकी गते ताङबो ताङ निवाला टोङ्गु कितुप गनवाए टोङ्गु कि रिम्बाला वाउ टिवाकी कोर्ला ताङगुप असर लाकी गते सुम ताङ झिकी छेर्मु डलौतुप लोनपोतुई लेन गेकु सङ्घीय टोसक टुङी खाङकी सेतुबिन सुङकी दिजेट लाकी गते च्याङा छेर्मु पल्जोर लो नितोङ गेचुगे सुम ताङ नितोङ गेचुगे झिकी ग्याठल ताङ डोसुङकी कोर्ला बजेट जाक नाङगुबिन प्रतिनिधि सभाला सिनाङ गोमाला बजेट कोर्ला टोङ्गु डुपा क्याने नोर लोनपो डाक्टर स्वर्णिम वाक्ले कि लेन ग्याप नम्बु सेनवाए नेपाल वायुसेवा निगम कि रुकुम नुप्ला त दुनठाक्ला नम्रु जिङ्क्याङ पोरुप गनवाए दिसिनाङ गोमाला नम्रु नि जिङ्क्याङ कि वाउ नाङला त नम्रु सुम जिङ्क्याङ कि तुप नेपाल वायुसेवा निगम रुकुम नुप कि सेतुपिन ल्याखुङ सो प्रेम ओली कि सेतुप नङसिन ज निमी सेर्मु काठमाडौँ रुकुम नेपालगञ्ज ज पासाङ सेर्मु नेपालगञ्ज रुकुम काठमाडौँ तङ जलहकपी सेर्मु नेपालगञ्ज रुकुम नेपालगञ्ज नम्रु जिङ्क्याङ कितुप गनवाए यर्बी तुसो उङ नोतुप कब्ला लाम त्यामा तुसो रिङ्बु स्याक फारसुर कितु पर्ला कलेला खेलथुपु तपकी त्याकी मिमाङ तुई नम्रु जिङ्क्याङ सुङसिमा गासु क्याउ सेनवाए हारिङ जम्बुलिङ ब्लड डोनेट तुसेन सिङवाए मिमाङ तुई तन्दोकला ठक थियो चिक ठक जिन्बा तोङ्गु मिमाङ तुई रक सुङ्ग्यप कितुप सिरुप नारा ज्याङने जम्बुलिङकी ग्यालखप नासोकला ल्यारिम नासोक कोरिकाने दि तुसेन सिङ ओतुप सेनवाए मिमाङ तुई तन्दोकला ठक सो खाक्सेन पोवाए सिरुप कोर्ला लेन खेपेल कितुप मिकिल्की ताङ ट्याङ्गा माला क्याने ठक जिन्बा तोङ्गुप मितिओला सिकोर कि लो ट्याङमा जुन लाकी तारिक चुब्जी सेर्मु दि तुसेन सेप लुक्सो ओतुपिन जम्बुलिङ ठोटेन सोकपा डब्लुएसओ कि तेन्दुप तान्दा तिङ्गि थो नङसिन जम्बुलिङला तरुङसाङ ठक निङमो ओतुप सेनवाए कोशी प्रदेशकी लोन्छन हिक्मत कुमार कार्की कि कोर्सुङ मक्मी सोकपा एम्बी मिमाङ तुई थेङ ताङबोकी सुङ इन्दुप सुङवाए एम्बी कोर्सुङ मक्मी प्रधान ल्याखुङ अपराध अनुसन्धान विभाग ताङ कोशी प्रदेश कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ कि आरिङ कोरी क्याउ ल्यारिमला खोङकी कोर्सुङ मक्मी सोकपी कोर्ला थेन्दुप टिवाकी कोर्ला सुङलप नाङसुङ लोन्छेन कार्की कि कोर्सुङ मक्मी कि सिजु ताङ ऐनला सुङकी आङ ताङबोला खक्सन पोची गौ सुङिन डिएनए परीक्षण कितुपला प्रयोगशाला जोगो ताङ डिजिटल प्रणालीला प्रदेश सुङकी रोक्रम कितुप खेलेन क्या नाङसुङ लोन्छेन कार्की कि सिसोक नाङला सिधे सुङ्क्योप टरी कितुपला ताङ लाका मेलाकपात्यो युङमो जोबला थिम नाङला देने लाका किगो ख्यान्तोक नाङसुङ सुङकी ताङगु पल्जोर लोकी नाङला लोक तोङा ताङ सै सुम ताङ सुमचि सुवाङा मेगावाट देन्दुप मिकुल जाङवाए लोक छुलोक तेजिन सिसाइ लोनखाङकी खेपेल क्याउ लोखोर यार्ग्या ल्यारिमला लोचिक नाङला तोङचिक ताङ सिपचु मेगावाट छुलोक देन्दुप मिकुल जाकु सेनवाए जोइङ ओतुप ताङ तान्दा तिङसोकला लेपु लोक आयोजनाला तुसोलारङ डुपा कितुप मिकुल जाकु ताङ तुक्राङ क्याने गेर्की सखुल्ने जोइङ ओतुप आयोजनाला साङ जोलमु जोने तेन तेन क्याउ तुसोलारङ डुपा कितुप मिकुल जाकु सेनवाए
গলুপ ছুজো নিশুজি নংলা ট্রাফিক কোরসংবাক মেকি গাড়ি টংগুপ মি তো নি তং সৈ জি তং গেলা ঠিম তং ওয়াই তিতিয়ামা গেলখাপলা টেঙ্গা বুম জি তং তং গেচু গ্যা টুক গেঠাল দু সেন ওয়াই সাং আরেক থুনে গাড়ি টংগুপ ঠিম কি খপতেলা রাইড শেয়ারিং অ্যাপ থকু ট্রাফিক তাক মিজিউ তং গাড়ি স্পিডলা টংগুপ তিওলা ঠিম টংগুপ ট্রাফিক কোরসংবাক মি ল্যাকুং কি সেতু বিন তুগ্রাং ক্যানে কাংথেপ হর্ন টংগুপ কাংথেপ দাসলা পার্কিং কিতুপ তং ট্রাফিক তাক মিজিউ দেওয়ালা সং ঠিম টংগুপ সেন ওয়াই সালেন লা বস কি গেবনে লামলা ইকুমি মিরা চিক না সগল ওয়ে সালেন কি সারাদা টংকের ওডা আং চিক শ্রীনগর বস পার্ক সিপলা দাং ইন মো বস কি গেবনে ছত্রে সরি ইল সকবা ওডা আং দিন কি লো শিপু শেয়ার টুকি উমা রেউলেলা বস কি গেপু শেন ওয়ে বস কি গেবনে বঙ্গি কোন ফকু রেউলে মেনজু কি তন্দকলা সালেন জংকি মেন খাংলা টিন গলনে চেক জাঁজ কি টুকরিমবালা মেন পা কি না সগল গোসনা কেউ শেন ওয়ে দাং নে সালেন কি কুমাক ডোয়িং ও তু বস কি রেউলেলা গেপুইন বস তং মস্তঙ্গুপ মিলা তান্দা কোরসংবাক মিকি জিমনে ঞ্যামশিপ কিং ওতুপ শেনওয়ে জাপা জংকি মেসি নগরলা লাংবুকি নকলনে আম্বু মিরাচিক নাসাগান ওয়াই জংকি কোরসংবাক মিলা খুঁকি ইন্সপেক্টর বিজয় চৌহান কি সেতুপ নংসিন মেসি নগর টংকের ওডা আং জিকি লোটুকচুরে নিকি পদ্ম পৌরেল নাসাগলুপ শেনওয়ে আরিং টপলা খুংতিওয়ালা লাংবুকি নকলুপ শেনওয়ে মৌসম পূর্বানুমান মাসাখা কি আরিং ইনমো কোশি তং মধ্য প্রদেশ কি দাসালালালা তং গেলখাপ কি খাংড়ি তং ফুসগুল কি দাসালালালা থক তং দুগেকু নেতাং ওদুপ সেনওয়ায় মাসাখা কি ছর থক তেজিন খা কি জোসালেন্সি সশিং লাম তেজিন নমরু জিনক্যংলা কিয়ন ভকুতপ কি চাকপু কি তুবলা মেমাংতি অতেরিলা সুওয়ায় রেডিও নেপাল নে আরিং কি সেরিকে কি সাঙ্গির দুসুং তুজিছে।

0: लसो फ्याफिल्ला रेडियो केताङ मुगलान लागे अर्थात वैदेशिक रोजगारी राङ्दा डेनमुला सूर्य मोक्तान वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ रोरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से शोभा चोगेताङ साताला तिरेम चुरुन दुरी प्रसारण लाभन खापुमला तिनीले केताङ मुगलानला गेरी इजरायल रे गेलाबारी निबन मुबा नेपाली गेलाबा मिसे सेनुन तोबा थेन गुनुन तोबा महत्वपूर्ण ठिमला फेरि कोइतामला सलमुला इजरायल रे गेलाबारी निबन मुबा मिसे खापबे मंगाछा आधिकारिक प्रक्रिया ग्याम्स चेक इन आवेदन पिन्दो बमला ओसम गे समझौता रिमोबा ताम गदे गोबरी खामदोबा रंगसे यांगतोबा यांगताम थेन जिम्मेवारी तिल तिल हिन्ना बिबा ताम गदे नुन ज्यानलासी गोदो बमला चुनाडुलासी गेलाबा ग्लारी खाजिबैनुन खाल्ला समस्या तासम खलंग थेन खरंगलासी रोकिन मारी खाम बमला बिबा ताम नुन लामन महत्वपूर्ण ताप बमला थे तपसे तिनीलाई गे ताङरी फिर्क्या भ्युली निसिलाबा गे दा सुरक्षित थेन मर्यादित सुबारी गे लबा दुईरी तेन्दोबा तिलै ठिम्ला तामसै ल्यामन ग्रेन भूमिका क्लाङमारी खाम्बासै तिनीलाई गे ताङरी चुनुन ताम्री कोइतामलाबारी छे बहिन्ना ओसेम वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ से पिनमान खाबा लुलु लुलु महत्वपूर्ण सूचना थेन साङ्गुर गदेनुन तिनीलाई गे ताङरी थानबारी बाङ्ला सलमला गे ताङ लिच्छा दोना ज्ञानबारी राङ्दा मोहिजन मुला गेताङ द तिगे गोर्खी साङ्गुर ग्याम साउदी अरबरी गेलाबारी निबा दुईरी अलपत्र तनालाबा कैलाश अधिकारी दा जेठलाला निची कुनु सरकार से उद्धार लसै नेपाल डिबा बोला काइब्लोन थेन लोनसेङजाङला गेदिम्री गुनासु लाबाला घण्टा चुइसे नि नाङरी नेपाल ग्याम गेलाबारी पुइबा दुईरी लाबा सम्झौता अनुसार तलब थेन सेवा सुविधा आपिन्ना दुङ्गाल पिन्सी थान्बा दुईरी कैलाश दा उद्धार लसी बाबा हिन्ना विषय काइब्लोन बालेन्द्र शाहला कागिर थुतबुन थेन अनुसन्धान खेनपो दिपा दहाल से सुङ्गा हिन्ना जेठलाला चुइसे कुकुनु फेसबुक री सिमन्त राज अधिकारी मिनमुबा कैलाशला लुई अवस्था ज्याबा आरेबा सुरक्षित टिबग्ला आरेबा थेन गे शोषण लाबा सम्बन्धी गुनासो लाबुमुबा
1: वैदेशिक रोजगार बोर्डला लोनखाङसे फिर्क्याबी हुल्डी निसी लाबा घेदा खारङ लासी सुरक्षित सोबारी खामला विवाह सम्बन्धी क्षमता लेना लाबारी लोलो लोलो तालिम कादे सेङबान खाबामुला चु तालिम बोर्डला लोनखाङरी सूचीकृत आप्रवासी स्रोत केन्द्र उप केन्द्ररी गे लाबान खाबा कर्मचारी कादेला क्षमता लेना लाबारी सेङबान खाबा हिन्ला
0: सरकार से देपेन फिर्का भ्युली गेलाबारी निवाला स्वीकृति री इन्ट्रीला आवेदन पिन्सी जिम्मा लिछा थेरी मुबा बेनन शर्त गर्दै पूरा ताबा मुसाम स्वचालित ठिम ग्याम देपेन गेलाबारी निवाला श्रम स्वीकृति री इन्ट्री पिनबारी खाम्बा ठिम सोपमुला लुबा विवरण पिन्सी अथवा तोकलाबा कागजात पेश आलाना देपेन गेलाबारी निवाला स्वीकृति किनबारी आवेदन पिन्सी गेलाबारी निब मिला स्वीकृति री खाजिबैडुन खाल्ला त्रुटि दशम निवेदन पिनमा मी राङ्नुन जिम्मेवार तातो बताम्नुन स्पष्ट पाङ्गो मला देपेन गेलाबारी निबारी विषय स्वीकृति किनमारी आवेदन पिनमा चोपी मेङाछ गेलाबारी निबाला स्वीकृति किनमा युल्थेन कम्पनी री देपेन गेलाबारी निबारी स्वीकृति किनमारी माहेबाला आवेदन पिन्दो बमला
1: चुराङनोन लासी आवेदन पिनबा धुइरी च्याङनारिनोन लासो म्याद मुबा पासपोर्ट तादोबा मुला भिसाला म्याद अथवा भ्यालिड भिसा तानुन तोबा थेन कम्पनी थेन करार सम्झौता लानुन तोबा ठिम मुला चुराङ लासिन फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी निमा सामाजिक सुरक्षा कोश्री अनिवार्य तोङ नि ग्यार्जा सोमसे सिका भ्रे टाङ्गा जम्मा लातो बामुला आइन्सम विवरण भरब लावाला प्रक्रिया आछ्यो बामुला ओसेम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोश्री तोङ गिक्से ग्यार्जा टाङ्गा जम्मा लासी पिन्नोन तोबा थेन आवधिक लुई बिमा

0: याम्बुला वीर अस्पतालले मुभा टेलिमेडिसिन सेवारी सेन्देरी सम्पर्कलाई चाहिँ सेन्देरी जानकारीका देखिनभरि खाम्बा मुला टेलिमेडिसिन सेवा किनभरि सिधन फोनलाई भरि खाम्बा मोबाइल नम्बर गर्दै 98513 45701 98513 45702 सिओला कु न्यामा हिन्से न्यासला ङा न्यामा दोनामा फोन लासी थेन लोलो लोलो माध्यम गदे इमो भाइबर थेन व्हाट्सएप ग्यामेनन सजिलो सेन डाक्टर गदे दा रांगला लुई समस्या थान बारी खाम्बा मला
1: दरेम बिसाम इजरायल री गे लावारी निभाला ताम लगे नेपाली गे लावा मिदा इजरायल री नेपाल सरकार सेन गे लावारी पुइबन खावा गोर्की ज्यावा थेन सुरक्षित युल हिन्ना नेपाल सरकार थेन इजरायल सरकार ला घुंग्री विक्रम सम्बत 2077 साल असोज लाला चुई भिला कुनु गे लावा मि पुइबा थेन बोरबा ताम्री सम्झौता लाबा मुबा थेली छ इजरायल ला दीर्घकालीन सिहार केन्द्र कादेरी नेपाली गे लावा मिदा केयर गिभर पुइवारी म्याङबा सम्झौता विषाम 2077 साल माघ लाला ब्रेक हुनु ताबमुबा थेनोन अनुसार चुनोन जेठ लाला चुई निस्ला कुनु तोन निसे ग्यार्जा सोम गे लावा मि इजरायल से रिबा मुला बिसी वैदेशिक रोजगार विभाग से गोर्की सूचना छिसी पाङबा मुला सूचना अनुसार चुनोन असार लाला निस कुनु हेन्से निचुई गा दोनामा ब्लिचुई गा दिङ धोनाला नेपाली हिलबासे आवेदन पिनबारी खाम्सेदा मुला च्याङनारी दिङगिक थेन लानारी गा दिङ दोना इजरायल टिसी गे लावारी म्याङबा थेन ओटिनोन याङबारी खाम्सेदा मुलाबिसी पाङबा मुला ओसेम साताला डुरे गे लामा लागिग्री च्याङनारी नोन लाग सोमसे गाङसाल टाङ्गा सोबारी खाम्सेदा मुलाबिसी पाङबा मुला केयर गिभिङ सम्बन्धी च्याङनारिन ला सोमला तालिम किन्बा कादेसे लानन ज्याबा तलब सुविधा थिएन सुरक्षा याङबारी खाम्बा घे लाबारी सरकार छेन पुइबारी छेबा ह्युल इजरायलला ठिम अर्थात् नियम कानुनला फेरि दारेम तिलाई जानकारी कादे थानबान मुला
0: इजरायल री खाजिबेनुन फिर्का भ्युल्ला हिलबासे बी वान भिसा आकिन्ना गेलबारी निबारी आम्याङबा ठिम्मुला बी वान भिसा विवाह अस्थायी रूप रिटिसी गेलबारी म्याङबा भिसा हिन्ना खाजिबेनुन हिलग्याम्से गेलबारी निबा मिसे इजरायल री प्रायोजक थेन तोकलाबा गेलबारी पिनबा गेन्दुन अथवा मिग्याम चेकेन गेलबारी म्याङबा ठिम्मुला छुट्टी दुई खाली मुबा दुई बिदा किन्बा थेन ब्लापना बारे अथवा नियमित गेलबा लिच्छाला फुर्सदला दुई रिनुन तोकलाबा गेन्दुन अथवा मिबीमा स्यान्ना गेलबारी आम्याङबा मुला
1: फिर्क्याव युलग्याम गे लावारी निभा अर्थात् नेपाल ग्याम गे लावारी निभा मिसेनोन थेरी पार्ट टाइम गे लावारी आयाङबा ठिम्मुला राङसे स्वीकृति किन्बा गे थेन डिक्पा गे लावारी जेखेन म्याङबा थेन चु ग्याम गोर्की गे लावारी बिसी निभा मिसे थेरी निसी गे पोबारी आम्याङबानोन थे युल्ला ठिम्मुला
0: गे पिनमा मिसे फिर्क्याव युलग्याम से गे लावारी निभा मिदा गे लावा मिसे गोबारी खाम्बा ग्योरी अनिवार्य करार पत्र पिनबा से थे किन्नुन तो बमुला चुराङ्गा सिलाबा करार अनिवार्य रूपले गे पिनबा मिथेन गे लबा मि मोसे दोबा तिल गे लादोबा हिन्ना थेला विवरण तलब भत्ता घादे याङबा तलब खाप दुई दोनामा याङबा तिल तिल तसम तलब थाबारी खाम्बा सामाजिक सुरक्षा रि योगदान लादोबा सम्झौता तिबा थेन थुम्बा दुईला जानकारी किन्दोबा नियमित घादे घण्टा थेन सातारी ब्लापन्नाबा अथवा छुट्टी घादे याङबा तलबी बिदा स्यान बिदा प्रिबाला बिदा बिरामी बिदा राङमा बिरन ताम गदे गोबारी खाम्दोबा लुई बिमा थेन टिबारी म्याङमा सुविधा घादे याङबा राङमा ताम गदे बिरन
1: करार लावा गे लावा मिला भिसा पिआईबीएला ठिम अनुसार जेखेन कापारी खाम्बा मुला पिआईबीएला ठिम अनुसार करारला दुई कापारी खाम्बा विवा गे लावा मिसे आवेदन पिनबा लिछा सरकार से पिआईबीएला एप्रुव लावा लिछा देपेन दिङ्गिक धोना गे लावारी खाम्बा भिसा पिनबा मुला अर्थात् नवीकरण लासी पिनबा ठिम मुला
0: इजरायल री गेलबारी निबा मिसे इजरायल ला ठिम थेन प्रक्रिया दा नाङसम भिसा किनमा दुई री भर लबा आवेदन री लुबताम थानबा मुसाम जुन गेलबारी बिसि निबा हिन्ना थे गेलबारी आखामसम अथवा दिमगिग्लान स्यानमी इजरायल री मुसाम इजरायल ला ठिम अनुसार थे युलग्याम तेस पुइगा बारी खाम्बा अथवा डिपोर्ट ला बारी खाम्बा नुन ठिम मुला
1: लानन दाङसे कु तारिक ढाङरी गे पिनबा कम्पनी अथवा मिसे गे लावा मिला बैंक खातारी टाङ्गा युसी पिन्नोन तोबा छिम्मुला फिर्क्याव युल्ला गे लावा मिला ताम्री बिसाम लादाङसेन तलब ग्याम तिलाई टाङ्गा थासी जेखेन पिनबा मुला तिला तिला गेरी लानुन दाङसे तलब ला टाङ्गा थाबा मुलाओम ठिम्से तोक लावा कर्थेन राष्ट्रिय बिमाला फानुन तोबा टाङ्गा टिबाला भाडा

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले युवा रोजगारी आ अपन सपना पूरा करबाक लेल विदेश जेबाक बाध्यता अन्त करबाक कार्यक शुरुआत अगिला आर्थिक वर्षक बजेटसँ कयल बतौलनि अछि। आइ काठमाण्डूमे आयोजित राष्ट्रीय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन 2083 के सम्बोधित करैत अर्थमन्त्री डाक्टर वागले युवा पलायन के विद्यमान अवस्था के चिरबाक लेल सरकार ठोस योजना सहित जग राखल आ अगला 5 वर्ष भीतर एहि के निष्कर्ष में पहुँचबाक स्पष्ट कयलनि। देशभर सँ सहभागी युवा उद्यमी के संबोधित करैत ओ कर में सहूलियत, वक्योता उलझन में रहल व्यवसायी के छूट, सरकारी प्रशासनक डिजिटलाइजेशन आ सुशासनक एजेंडा कारण सँ देश निर्माणक नया मार्ग क्षेत्र करबाक दावी कयलनि। युवा सभक उद्यमशील सोच आ योजना के प्रोत्साहन करबा सन बजट में बहुत कार्यक्रम समेटल गेल हुनक कथन छल। करक दर समय परिमार्जन कर न्यून आय भेल तथा शुरुआतक चरण में रहल युवा उद्यमी के करक झंझट से मुक्ति देल गेल चर्चा करैत अर्थमंत्री डॉक्टर वागले करक उलझन में पड़ल उद्योगी व्यवसायी के नया ढंग से व्यवसाय आगू बढ़ेबाक लेल बजट सहूलियतपूर्ण घोषणा कयल आ एकर फायदा लेबाक लेल आग्रह कयलनि। आई विश्व साक्षरता के फिर से सुनल जाए। आई विश्व रक्तदाता दिवस थिक। मानवता के लिए एक बूंद खून रक्तदान करू जीवन बचाओ नारा के संग विश्वक विभिन्न देश में विविध कार्यक्रमक संग ई दिवस मनाओल जा रहल अछि। सुरक्षित खून तथा खूनजन पदार्थक आवश्यकता संबंध में चेतना वृद्धि करबाक संगे निःशुल्क तथा स्वैच्छिक रूप में रक्तदान करबाक आ करवला रक्तदाता प्रति सम्मान व्यक्त करबाक उद्देश्य सँ हरेक वर्ष जून 14 तारीख में ई दिवस मनाओल जाइत अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सार्वजनिक कयल पछिला तथ्यांक अनुसार विश्वव्यापी रूप में सुरक्षित खूनक आपूर्ति सुधार दिस उल्लेखनीय प्रगति भेलाक बावजूदो सुरक्षित खून में पहुँच के दृष्टि सँ एखनो भारी असमानता कायम अछि। WHO द्वारा संकलन कयल 132 देशक तथ्यांक अनुसार सन 2013 सँ 2023 धरि में विश्व भरि खून संकलन लगभग 19% सँ वृद्धि भेल अछि। सन 2023 में प्राप्त अनुमानित 12 करोड़ रक्तदान मध्य 85% सँ अधिक योगदान स्वैच्छिक तथा निःशुल्क रक्तदाता सँ आयल अछि। मध्य प्रदेशक 7% जनसंख्या में विद्युत सेवा पहुँचल अछि। राष्ट्रीय प्रसारण मार्फत मध्य प्रदेशक 136 पालिका के 1271 वार्डक सब घर धूरी में विद्युत सेवा पहुँचल। मध्य प्रदेशक अर्थमंत्री युवराज भट्टराय आर्थिक वर्ष 2082-83 के लेल आय प्रदेश सभाक बैठक में पेश कयल आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख रहल अछि। एकर संगे सब पालिका सब में बैंक तथा वित्तीय सेवाक पहुँच भेल आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख अछि। मध्य प्रदेशक 136 पालिका में 1754 शाखा मार्फत बैंकिंग सेवा देवाक काज भेल आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख रहल अछि। प्रदेशक आर्थिक क्षेत्रक विकास में कृषि वन तथा मत्स्य क्षेत्रक योगदान 34.97% रहल अर्थमंत्री द्वारा पेश कयल आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख रहल। एहिना अर्थमंत्री युवराज भट्टराय अगला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम सहितक बजट प्रदेशक आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा देल गेल संकेत के आधार पर आबयवला जनौलनि अछि। मध्य प्रदेश सभाक दोसर बैठक 18 पैसावला भेल अछि। एहिसँ पहिने बैठक में सभामुख राम आशीष यादव मध्य प्रदेश सरकारक आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सहितक बजट 18 प्रदेश सभाक बैठक में पेश करबाक जानकारी देने छलथि। मध्य प्रदेशक पर्यटन प्रवर्धन तथा एहिठामक पर्यटकीय गंतव्य संस्कृति आ स्थानीय परिकारक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य सँ बीतल शुक्र दिन सँ शुरू भेल 3 दिवसीय मध्य ट्रैवल मार्ट आइ सम्पन्न भेल अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड आ जितपुर सिमरा उप महानगरपालिकाक संयुक्त आयोजन में सम्पन्न कार्यक्रमक समन्वय नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स नाटा मध्य प्रदेश कयलक अछि। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक 8 जिलाक पर्यटकीय क्षेत्र धार्मिक संपदा संस्कृति तथा स्थानीय उत्पादन के पर्यटन बाजार सँ जोड़बाक प्रयास कयल आयोजक जनौलक अछि। नाटा मध्य प्रदेशक अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछाने के अनुसार नेपाल आ भारतक विभिन्न शहर सँ 200+ पर्यटन व्यवसायी टूर ऑपरेटर कंटेंट क्रिएटर संचारकर्मी तथा पर्यटक कार्यक्रम में सहभागी भेल छलथि।
भारतक रक्सौल, पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, अयोध्या, कोलकाता सहितक सहरसा आयल पर्यटन व्यवसायी सबके मधेशक पर्यटन के संभावना संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी कराओल गेल छल। अध्यक्ष लामी छा ने भारतीय पर्यटक के आगमन वृद्धि करबाक लक्ष्य सहित ट्रैवल मार्ट आयोजन कयल गेल चर्चा करैत 12 परसा सहित मधेशक 8 जिलाक धार्मिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक संपदा के भारतीय पर्यटन बाजार से जोड़बाक प्रयास कयल बतौलन। 4 दिन धरि संचालन भेल कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थानीय तथा अन्य साझेदार निकाय सभक सहलगानी में आयोजन कयल गेल छल। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के उप प्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी मधेश प्रदेशक पर्यटन क्षेत्रक अपार संभावना के उजागर करबाक एहन कार्यक्रम प्रभावकारी होबाक बात बतौलन। ओ अमलेखगंज के प्रमुख पर्यटकीय गंतव्यक रूप में विकास करबाक अभियान अंतर्गत ट्रैवल मार्ट आयोजन कयल उल्लेख कयलन। कार्यक्रमक औपचारिक उद्घाटन शुक्र दिन वीरगंज स्थित होटल सरोवर में कयल गेल छल। उद्घाटन से पहिने सहभागी सबके महागढ़ी माई मंदिरक दर्शन कराओल गेल छल। उद्घाटन पश्चात टोली सिमरा पहुँच के होटल क्लासिक प्लाजा में पर्यटन प्रवर्धन संबंधी छलफल कार्यक्रम में सहभागी भेल छलथि। कार्यक्रमक दोसर दिन सहभागी सबके अमलेखगंज स्थित सिद्ध बाबा हाइकिंग रूट तथा परसा राष्ट्रीय निकुंज में जंगल सफारी कराओल गेल छल। तकर बाद टोली बर्दीवास स्थित टूटेश्वर महादेव मंदिर होइत जनकपुर धाम पहुँचल छल। जनकपुर धाम में मिथिला आर्ट गैलरी अवलोकन, जानकी मंदिर दर्शन तथा साँझक समय गंगा आरती में सहभागी कराओल गेल छल। 3 दिनक भ्रमण तथा अवलोकन कार्यक्रम पश्चात आई सहभागी सबके विदाई कयल गेल। आयोजक के अनुसार मधेश ट्रैवल मार्ट मधेश प्रदेशक धार्मिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय गंतव्य सभक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचार प्रसार करबा में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचबाक विश्वास कयल गेल अछि। संगे भारतीय पर्यटक अनबाक अभियान के थप प्रभावकारी बनबैत पर्यटन क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि विस्तार में सेहो सहयोग पहुँचबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। वन क्षेत्र से अवैध रूप में गिट्टी बालू लोड कर 2 टिपर गाड़ी प्रहरी परसा के परसागढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 से पारस चौक से नियंत्रण में ले गेल जनौलक अछि। टिकुलिया स्थित वीरगंज से अवैध काल 91-9967 आ प्रदेश 2030001-0935 नंबर के टिपर गाड़ी इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरबा सगोलिक प्रहरी टोली शनि दिन साँझ पारस चौक से चालक सहित नियंत्रण में लेलक अछि। पारस चौक में प्रहरी दुनू टिपर रोक कर चेक जाँच करित काल चालक संग गिट्टी बालुआक मिल बीजक नहीं भेलाक बाद चालक सहित दुनू टिपर नियंत्रण में लेल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरबा सुगौली प्रहरी निरीक्षक समुन्नत अधिकारी जानकारी देलनि। काठमांडू महानगरपालिका एहि वर्ष मिस्टर महानगर के उपाधि सगेंद्र सिंह के प्रदान कयलक अछि। काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 22 द्वारा आयोजन कयल गेल मिस्टर महानगर के दोसर संस्करण के उपाधि सिंह के प्रदान कयल गेल। मिस्टर महानगर शारीरिक संगठन प्रतियोगिता में डिवाइन फिजिकल फिटनेस सेंटर के सिंह 75 किलो से ऊपर के तोल समूह से उपाधि हासिल कयलन अछि। ओ तोल समूह के प्रतिस्पर्धा में 1,00,000 ओवरऑल प्रतिस्पर्धा से दोसर, मिस्टर महानगर के उपाधि सहित 5,00,000 टका आ ट्रॉफी आ बैनर प्राप्त कयलन अछि। गत वर्ष सम्पन्न पहिल प्रतियोगिता में ग्रेस महर्जन पहिल मिस्टर महानगर उपाधि प्राप्त कयने छलथि। विजेता के काठमांडू महानगर पालिका कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोल ट्रॉफी, मेडल आ प्रमाण पत्र प्रदान कयलनि। महिला फिजिक्स दिस NRK फिटनेस के सीता खत्री प्रथम स्थान हासिल कैली। हुनका नगद 1,25,000 टका सहित पदक आ सम्मान पत्र प्रदान कयल गेल। एहि वर्ष पुरुष दिस 9 विधा में प्रतिस्पर्धा भेल छल। एथलेटिक्स फिजिक्स दिस 2 विधा में प्रतिस्पर्धा भेल छल। महिला दिस एथलेटिक्स फिजिक्स अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कराओल गेल छल। एथलेटिक्स फिजिक्स दिस पुरुष आ महिला दुनू विधा में प्रथम पुरस्कार 1,25,000, दोसर सँ पाँचम स्थान धरि क्रमशः 75,000, 50,000, 25,000 तथा 10,000 टका नगद सहित ट्रॉफी आ मेडल प्रदान कयल गेल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्विट्जरलैंड में आप्रवासन आ जनसंख्या वृद्धि के लिए अधिक समय से चल रहा बहस आई निर्णायक चरण में पहुंचल अछि। देश के सबसे पैघ राजनीतिक दल स्विस पीपुल्स पार्टी जनसंख्या 1 करोड़ में सीमित करबाक प्रस्ताव आगू रखलाक बाद मतदाता सब अकर पक्ष आ विपक्ष में मतदान कऽ रहल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनल छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक 2083 के विभिन्न शीर्षकों पर कल से शुरू होगी चर्चा। विदेश मंत्री शिशिर खनाल चीनी विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 4 दिवसीय भ्रमण के लिए पहुंचे बीजिंग। मध्य प्रदेश के सभी घरों तक पहुंची विद्युत सेवा और अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावना के बीच कतर का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तेहरान। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक 2083 के अंतर्गत मंत्रालयगत विनियोजन शीर्षकों पर कल और परसों चर्चा होगी। संघीय संसद सचिवालय के अनुसार मंत्रालयगत चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों का संबंधित मंत्री आगामी आषाढ़ 3 और 4 गते उत्तर देंगे। कल युवा श्रम तथा रोजगार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति कृषि वन तथा पर्यावरण सूचना तथा संचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन शिक्षा तथा खेलकूद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन तथा महिला बाल बालिका लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के विनियोजन शीर्षकों पर चर्चा होगी। इसी तरह परसों विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन कानून न्याय तथा संसदीय मामला पूर्वाधार विकास गृह ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई परराष्ट्र अर्थ तथा रक्षा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय राष्ट्रीय योजना आयोग सचिवालय उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति कार्यालय के विनियोजन शीर्षकों पर चर्चा होगी। चीन के 4 दिवसीय औपचारिक दौरे पर गए विदेश मंत्री शिशिर खनाल बीजिंग में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागी हुए हैं। दूतावास के अनुसार आज अपराह्न विदेश मंत्री खनाल उनके सम्मान में नेपाली दूतावास द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए और नेपाली समुदाय के साथ अंतर्क्रिया की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं सुशासन का संस्थागत विकास आर्थिक विकास और समृद्धि पर केंद्रित है। साथ ही उन्होंने नेपाली समुदाय से देश की समृद्धि अभियान में सहभागी होने का आह्वान किया। मंत्री खनाल ने चीन में नेपाल के हितों के प्रवर्धन और नेपाली नागरिकों को प्रभावकारी सेवा प्रदान करने के लिए दूतावास के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विदेश मंत्री खनाल चीन के विदेश मंत्री एवं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य वांग यी के सौहार्दपूर्ण निमंत्रण पर आज सुबह बीजिंग पहुंचे थे। बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर बीजिंग स्थित नेपाली दूतावास की कार्यवाहक राजदूत श्रीमती रोशन खनाल और चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश की 100% जनसंख्या तक विद्युत सेवा पहुंच गई है। राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश की 136 पालिकाओं के 1271 वार्डों के सभी घरों तक विद्युत सेवा पहुंची है। आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए आज प्रदेश सभा की बैठक में अर्थमंत्री युवराज भट्टाराय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की 100% जनसंख्या तक विद्युत सेवा पहुंचने का उल्लेख किया गया है। अर्थमंत्री भट्टाराय ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सहित बजट आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त संकेतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट कल प्रदेश सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के लिए 2,62,74,00,000 रुपए विनियोजित किए हैं। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र के माध्यम से सौर्य हवा और लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार स्वच्छ खाना पकाने की तकनीक बायोगैस ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने लगभग 2,50,000 घरों में विद्युतीय चूल्हा बायोगैस और सुधार किए गए चूल्हों जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 10 बायोगैस संयंत्र 9 कचरे से ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं 27 मेगावाट सौर्य रूफटॉप प्रणाली और 120 सौर्य पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। बजट में ग्रीन हाइड्रोजन हरित उद्योग जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और कार्बन व्यापार को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। ये जानकारी अर्थ मंत्रालय ने दी। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा है कि आगामी 5 वर्षों में युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी। काठमांडू में आज आयोजित राष्ट्रीय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन 2083 में अर्थमंत्री डॉ. वागले ने कहा कि आगामी वर्ष के बजट के माध्यम से युवाओं के लिए देश में ही रोजगार शिक्षा और अन्य अवसरों का पर्याप्त सृजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में कर की दर घटाकर 1,00,000 रुपए तक कमाने वाले युवाओं को महत्वपूर्ण सहूलियत दी गई है और उन्हें कर संबंधी झंझटों से राहत प्रदान की गई है। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने सभी युवाओं से इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि बजट तैयार करते समय युवाओं की उद्यमशील सोच और योजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है और उसी अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। विशेषज्ञों ने कहा है कि नेपाल में आंखों के उपचार सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, लेकिन अंधेपन का जोखिम अभी भी बना हुआ है। नेपाल नेत्र ज्योति संघ की 30वीं केंद्रीय सभा में वक्ताओं ने बताया कि औसत आयु बढ़ने, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ने से आंखों के रोग भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र उपचार सेवाओं का विस्तार करने पर जोर दिया। संघ के अनुसार पिछले वर्ष 2025 में उनके अस्पतालों और उपचार केंद्रों के माध्यम से 33,78,042 लोगों की आंखों की जांच की गई, जबकि 2,66,401 शल्य क्रियाएं की गईं। कार्यक्रम में नेपाल में नेत्र उपचार क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रसाद पोखरेल सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। आदिवासी जनजाति युवा महासंघ नेपाल और राष्ट्रीय युवा परिषद के आयोजन में विश्व आदिवासी युवा सम्मेलन 2026 संपन्न हुआ है। इसी जेठ 30 और 31 तारीख को आयोजित इस सम्मेलन में आदिवासी जनजाति और युवाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा, संवाद और अनुभवों का आदान प्रदान किया गया। ये बात महासंघ नेपाल के अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ ने बताई। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि राजनीति को सेवा के प्रतीक के रूप में रूपांतरित करना आज की आवश्यकता है। काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 द्वारा सामाजिक सेवा में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सभापति थापा ने कहा कि सम्मानित व्यक्तित्वों का योगदान केवल पेशा और क्षेत्र के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में भी योगदान दिया है। काठमांडू महानगरपालिका ने आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए 11 क्षेत्रों को समेटते हुए 101 बिंदुओं के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय सभा गृह में आज आयोजित नगर सभा के 19वें अधिवेशन की बैठक में महानगरपालिका की कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोल ने महानगरपालिका को मौलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय और सुशासन युक्त महानगर बनाने के लक्ष्य के साथ नए नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी तरह नीति तथा कार्यक्रम के मुताबिक कचरा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता में रखते हुए कचरे को निःशुल्क, सशुल्क, न्यूनीकरण, रचनात्मक रिसाइकल आदि उपयोग आधारित उपरूप में 7 समूहों में विभाजित किया जाएगा और तकनीक के उपयोग से कचरा प्रबंधन को उचित रूप से संचालित किया जाएगा। मानवता के लिए एक बूंद रक्त, रक्तदान करें, जीवन बचाएं नारे के साथ विश्व रक्तदाता दिवस आज नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। सुरक्षित रक्त एवं रक्तजन्य पदार्थों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निशुल्क और स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को यह दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर कूटनैतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में कतर का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज तेहरान पहुंचा है। ईरानी मीडिया के अनुसार ये दौरा हाल ही में हुई वार्ताओं के बाद बातचीत को आगे बढ़ाने और समझौते की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक कतर समझौते को अंतिम स्वीकृति दिलाने की कोशिश में जुटा है ताकि कई महीनों से जारी तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को समाप्त किया जा सके। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने समझौते की समय सीमा को लेकर सतर्क रुख अपनाया है और कहा है कि वार्ता अभी निर्णायक चरण में नहीं पहुंची है। वहीं ईरान के कट्टरपंथी धड़ों ने भी कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति जताते हुए देश के रणनीतिक और सुरक्षा हितों से समझौता न करने की बात कही है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक 2083 के विभिन्न शीर्षकों पर कल से शुरू होगी चर्चा। विदेश मंत्री शिशिर खनाल चीनी विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 4 दिवसीय भ्रमण के लिए पहुंचे बीजिंग। मध्य प्रदेश के सभी घरों तक पहुंची विद्युत सेवा और अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावना के बीच कतर का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तेहरान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: फोर्जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
6: नेपालको समावेशी आवाज।